0: ആകാശവാണി കോഴിക്കോട്. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് 8:15 മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സേ സമാചാർ പ്രഭാത് കെ സാത്ത് മേ മുകേഷ് കുമാർ ബൽ. मुख्य समाचार. पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार. पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत. तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. राज्य में किसी को बहुमत नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया. ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल. और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है. पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है. वाम दल को 1 सीट मिली है. मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं. बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं. एक रिपोर्ट.
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा. लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड पर आ चुकी है. पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा. उस सीट की गिनती 24 मई को होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है. जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी. संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता.
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती. इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से.
3: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. थलाइवा, जन नायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है. 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है. पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है. जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई.
1: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती. दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है. कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए. सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की. विधानसभा में 1 भी सीट न

0: होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने एक एक सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने

0: अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप्प पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, यह आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाए। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाए। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडैक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और

0: संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरों मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ. अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has said the attack on the Fujairah Petroleum Industries zone in the UAE, which resulted in injuries to 3 Indian nationals, is unacceptable. 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries zone yesterday following a drone attack from Iran. In a statement, the External Affairs Ministry called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. It said India continues to advocate for dialogue and diplomacy to address the situation so that peace and stability may be restored across West Asia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Dr. Jaishankar was addressing the media after his meeting with Jamaican Foreign Minister Kamina Johnson-Smith and other cabinet members. The External Affairs Minister said the talks were comprehensive and substantive, covering the full spectrum of bilateral ties and identifying new avenues to further strengthen cooperation. He noted that both countries signed several important agreements and discussed the effective implementation of recently concluded MOUs in areas such as digital transformation, cultural exchange, sports and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
3: We reviewed the

0: प्यारे श्रोताओं, नमस्कार। आज का ऐक्य भारती कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे शर्मिला अतुल कुमार द्वारा लिखित एवं प्रस्तुत अपनी कविताएं।
1: नमस्ते। वाणी जो चाहे सब चाहे बोल दे, कहाँ चाहे जहाँ चाहे बोल दे। वाणी ऐसी है कि हम कहीं भी कुछ बोल देते हैं, मगर बात सच्ची हो तो प्यार से बोले, बात कड़वी हो तो भी प्यार से बोले, बात कोई राजनीति हो तो प्यार से बोले, बात घर की हो तो प्यार से बोले, बात दोस्तों की हो तो मस्ती में बोले, बात दिल की हो तो आनंद से बोले, बात शादी की हो तो उमंग से बोले, बात त्योहारों की हो तो हर्ष उल्लास से बोले। जहाँ कहाँ मधुर वाणी हो वहाँ प्यार भी रहता है, जरूर मधुर वाणी रखे। वाणी के बारे में कविता पेश कर रही हूँ। वाणी की है दो ही रूप, वाणी की है दो ही रूप, एक है मीठा दूजा कड़वा, एक है मीठा दूजा कड़वा। रहे सब दूर वाणी कड़वी से, रहे सब दूर वाणी कड़वी से, साथ सदा रहे मीठी वाणी के, साथ सदा रहे मीठी वाणी के। वाणी के है दो ही रूप, एक है मीठा दूजा कड़वा। पसंद करना, बढ़ते रहना, चाहते रहना, प्राप्त करते रहना, उससे कोई ना हो बड़ा अमीर। पसंद करना, बढ़ते रहना, चाहते रहना, प्राप्त करते रहना, उससे कोई ना हो बड़ा अमीर। इसे निभाना यही तो है, इसे निभाना यही तो है वाणी की सच्ची अमीरी। वाणी की सच्ची अमीरी है इसे निभाना। वाणी की है सच्चाई व्यक्ति से, वाणी की है सच्चाई व्यक्ति से, संस्कार वर्ण सब प्रकट होते हैं इसी से, संस्कार वर्ण सब प्रकट होते हैं इसी से। जब हो वाणी में सच्ची अमीरी, तब होती है वाणी में सच्ची अमीरी। दर्पण भी यही समझाए, दर्पण भी यही समझाए, रख ले वाणी मीठी तू रंग हर्ष का दे दे तू, रख ले वाणी मीठी तू रंग हर्ष का दे दे तू। फैला दे रंग प्रेम के अनेक, फैला दे रंग प्रेम के अनेक, सदा वाणी से, सदा वाणी से सब सुखी रहे प्रत्येक, सदा मीठी वाणी से सब सुखी रहे प्रत्येक। दर्पण भी यही समझाए, दर्पण भी यही समझाए, रख ले वाणी मीठी तू रख ले वाणी मीठी तू, रंग हर्ष का दे दे तू रंग हर्ष का दे दे तू। फैला दे रंग के प्रेम अनेक, फैला दे रंग प्रेम के अनेक, सदा वाणी से सब सुखी रहे प्रत्येक, सदा वाणी से सदा मीठी वाणी से सब सुखी रहे प्रत्येक। सदा उगे सूरज सुख का, कहे शर्मी, कहे शर्मी मीठी वाणी से, सदा उगे सूरज सुख का, कहे शर्मी मीठी वाणी से। गलत फहमियाँ दूर हो जाए सदा, गलत फहमियाँ दूर हो जाए सदा, हो गलत फहमियाँ दूर, शर्मी कहे हो गलत फहमियाँ दूर। हमारी छाप बनती है बचपन से, बचपन में हमने जो किया है वो हमारे मन में छाप की तरह रह जाता है। बचपन चला गया हमारे मन में, एक छाप छोड़ गया जो हम पूरी ज़िंदगी उसकी यादों में रह के जीवन का खट्टा मीठा रास्ता, कड़वा रास्ता काटने में सफल रहते। आगे की अपनी पीढ़ियों में भी बचपन का ही रंग देखते हैं जिसमें हम हमारी छाप ढूंढते हैं। कहानी सुनते थे वह कहानी बच्चों को सुनाते, हम जो कहानी सुनते थे वह कहानी बच्चों को सुनाते, हम भी बचपन की कोई भी यादें भूल नहीं पाते। बचपन की बड़ी छाप छोड़ जाती है हमारे मन पे, बचपन हमारे मन पे बड़ी छाप छोड़ जाती है। हमारी छाप बचपन। क्या बोलूँ मैं क्या लिखूँ, क्या बोलूँ मैं क्या लिखूँ, निर्दोष प्रेम सा

सागर बचपन होता है, निर्दोष प्रेम सागर बचपन होता है, ऐसा ही होता पूरा खेला तो, ऐसा ही होता पूरा खेला तो, आज कहीं ना होती बुराइयाँ, आज कहीं ना होती बुराइयाँ। बदले चाहे दुनिया ना बदले बचपना, बदले चाहे दुनिया ना बदले बचपना, जैसा था वैसा ही रहेगा बचपना, जैसा था वैसा ही रहेगा बचपना। कहीं हरकतें होती थी जब था बचपन, कहीं हरकतें होती थी जब था बचपन, आज कहीं ना दिखे वो हरकतें, आज कहीं ना दिखे हम में वो हरकतें। बचपन का चेहरा भोला सा, बचपन का चेहरा भोला सा, देखे वो भूल जाए गम सारा, देखे वो भूल जाए गम सारा। गिले शिकवे सब दूर हो जाए, गिले शिकवे सब दूर हो जाए, जब देखूं बचपन के वो दो चेहरे। संबंध भरे स्वार्थ से सभी, संबंध भरे स्वार्थ से सभी, पर हो जाते आज हम नटखट तो ये संबंध भी दे प्यार सभी को, ये संबंध भी दे प्यार सभी को, जब देखूं वो दो चेहरे बचपन के, जब देखूं वो दो चेहरे बचपन के। ना कोई बोझ ना ही रखनी खुद रोज नीशी, ना कोई बोझ ना ही रखनी खुद रोज नीशी, मन चाहा मोड़ में रहते हैं, मन चाहा मोड़ में रहते हैं, दोनों चेहरे साथ है हमारे, दोनों चेहरे साथ है हमारे, बचपन के हैं छाप हमारे, ये बचपन के हैं छाप हमारे, तो कहे शर्मी छाप रहे हंसते खेलते ही, छाप रहे हंसते खेलते ही। संबंध भरे स्वार्थ से सभी, संबंध भरे स्वार्थ से सभी, हो जाते आज हम नटखट तो, हो जाते आज हम नटखट तो, ये संबंध भी दे प्यार सभी को, ये संबंध भी दे प्यार सभी को, जब देखूं वो दो चेहरे बचपन के, जब देखूं वो दो चेहरे बचपन के। ना कोई बोझ ना ही रखनी खुद रोज नीशी, ना कोई बोझ ना ही रखनी खुद रोज नीशी, मन चाहा मोड़ में रहते, मन चाहा मोड़ पे रहते, दोनों चेहरे साथ है हमारे, दोनों चेहरे साथ है हमारे, बचपन के हैं छाप हमारे, बचपन के हैं छाप हमारे, तो कहे शर्मी छाप रहे हंसते खेलते ही सदा। संवादों के बीच मौन, माँ, माँ ही तो है मौन में संवाद और संवादों के बीच मौन, माँ ही रहती है ऐसी, ममता का सागर अखूट है, जिसको पहचानने कहीं भव करने पड़ते हैं, पर जब पहचान हो जाए मौन में खुद चल जाते हैं, और माँ ही चल गई हो तो कैसे करूं संवाद या कैसे रहूं मौन, मैं समझ नहीं पाऊं, तो आइए मौन और संवाद माँ के बिना क्या है। संवादों के बीच मौन, माँ, मौन सा छाया गया जब चली गई माँ, मौन सा छाया गया जब चली गई माँ, माँ की यादों ने दी शक्ति फिर जीने की, माँ की यादों ने फिर दी शक्ति जीने की, पर मौन सा छा गया जब चल गई माँ, ममता का सागर डूबा जब प्यार मोहब्बत का संग छूटा, ममता का सागर डूबा जब प्यार मोहब्बत का संग छूटा, तब फूल सी प्यारी लगती थी माँ, फूल सी प्यारी लगती थी माँ, जान हमारी होती थी माँ, जान हमारी होती थी माँ, मौन सा छा गया जब चल गई माँ, जब माँ की साथ साथ थी, जब माँ की साथ साथ थी, महसूस होती थी स्वतंत्र, तभी आज महसूस होता है कहीं निर्भर होना, तभी आज महसूस होता है कहीं निर्भर होना। भूल ना जाऊं, भूल ना जाऊं माँ तेरा जब साथ पाऊं, कुछ भूल ना जाऊं, लगे मौन भी संवादों जैसा, लगे मौन भी संवादों जैसा। अब तो संवाद भी मौन से लगते हैं, अब तो संवाद भी मौन से लगते हैं, छूटा साथ तेरा तब से

0: छूटा साथ तेरा तब से, पर धैर्य दिया है तूने ही, पर धैर्य दिया है तूने ही। मौन संवादों के बीच भी तेरी यादों के दिए जलते हैं, मौन और संवादों के बीच भी तेरी यादों के दिए जलते हैं। आज की घड़ी भी लगे तू है संग, तू है संग मेरी माँ, तू है मेरे संग। कहीं कहीं तो महसूस भी हुआ है, कहीं कहीं तो महसूस भी हुआ है, तब मिले हैं आशीर्वाद और फला है, तब मिले हैं आशीर्वाद और फला है। फूल सी प्यारी रहती थी माँ, हरदम हमारे संग रहती थी माँ, फूल सी प्यारी रहती थी माँ, हरदम हमारे संग रहती थी माँ। आज तो अमूल्य घड़ी है, आज अमूल्य घड़ी है, जिसमें तू तो साथ खड़ी है, जिसमें तू तो साथ खड़ी है। बरसा दे आशीर्वाद, बरसा दे आशीर्वाद दिल से, मौन संवादों को बिखरा के, मौन और संवादों को बिखरा के, मेरे साथ सदा रहना तू, मेरे साथ सदा रहना तू। शर्मी कहे माँ का मौन हमारे पर न हो, माँ का आशीर्वाद ही हमारे पर रहे सदा।
1: अब तक आप सुन रहे थे शर्मिला अतुल कुमार द्वारा लिखित एवं प्रस्तुत अपनी कविताएं। इसी के साथ संपन्न है आज का ऐक्य भारती कार्यक्रम। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।

0: तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक

0: जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का

0: आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia.